थोड़ा नेपाल खह नेपाल बासे समाचार जे उपेश मर्जन पाखि नादिस थौ नेपाल सम्बत चिन्स पी कुद यलागा दशमी नेपाली काङ्ग्रेस या चिन्याको गु त मुज्या मिग ये न्याकुदो परम्परा या हनाबना यो पाया मगस भिङ्गु नेपाली नीति बल्लागो काङ्ग्रेस दैगो नारा नाप त मुज्या न्याकु ख त मुज्या उलेज्या नेपाली काङ्ग्रेस या सभापति गगन थापा नागरिक थ नुगस ते त व नायपिन त निहस ते गु लकस चुलाकेमा धैदिगुदो उखिया नीति नागरिक निहस असहमति व विचाय नीति चक दबुमा वेक्ल धैदिल चिन्तलिपा चकदबु चागुदु थो ए या छगु ख्य जग मुखु नेपाली रान्तिक आन्दोलन चकदबुले महत्त्वपूर्ण भूमिका मितुगुदु थन्हे आपल रान्तिक दल दिसे नेता त थगु रान्तिक यात्रा न्याकुगुदु वेक्ल धैदिल सभापति थापा जननायक बिपी कोइराला गणेशमान सिंह ओ गिरिजाप्रसाद कोइराला नाप थय चकदबु पाखे ऐतिहासिक रान्तिक घटना सम्बन्धी भाषण या गुलुमका दिसे चकदबुले व्याग्ल कथा विचार लिसे मतभेद या त छगु हेथासे हया सम्वाद यागु होता पिगु नेतना दिल वेक्ल प्रधानमन्त्री जुई धङ्कुपी हाक्न प्रधानमन्त्री जुई त सोइगु नेता जुई धङ्कुपी हाक्न नेतृत्व लिसाकया वैगु व मन्त्री जुई धङ्कुपी नाप थित्तु थिक सत्या उनीगु प्रवृत्ति जनता रान्तिप्रति वितृष्णा उपेकुगु नेतना दिल त मुज्या राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछाने आया सरकार हो लोकतन्त्रपति हुइना फुइना जुया चुङ्गु नेतना दिसे लोकतन्त्र या मु माने त रक्षा या त थपिन हने न्यागु थैदिल सभापति लामिछाने थपिनसँग ज्या या मफुसा जनता निर्वाचन पाखे लिस बिगु नेतना दिल वेक्ल सडक सर्केरा त कोथले मफैगु धया दिसे निर्वाचन या त छेले त इनाप्नाप यना दिल थोयदी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी या कजी पुष्पकमल दाल प्रचण्ड दे लोकतन्त्र संविधान ब लाके त काङ्ग्रेस नेतृत्व या त हपाबी त थपे तयार दु धैदिल दे या समृद्धि व विकास या नीति फुक रान्तिक शक्ति छप्प जुइमा धैदिल थोय झोले नेकपा एमाले मु छ्यान्जे शङ्कर पोखरेल पार्टी छप्प जुया लोकतन्त्र या रक्षा वो दे या ख्वा हिकेको यी वगु नेतना दिल अथे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नाय राजेन्द्र लिङ्गदेन दे या त नुता या त राष्ट्रिय सहमतिमा धाइदिल पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई दे विकास या नीति स्पष्ट व दीर्घकालीन योजना दिएका छेला बुला हेमा धाइदिल थोय चोली श्रम संस्कृति पार्टी या मु छ्यान्जे आरएन राई नेपालले लोकतन्त्र व प्रजातन्त्र प्रतिस्थाय नीति काङ्ग्रेसमा बा लाख ज्या यागु नेतना दिल जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल नेता शरदसिंह भण्डारी नेपाली जनता या त नियन्त्रित लोकतन्त्र स्वीकारे जुइमखु नेतना दिल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी या संस्थापक नेता रेशम चौधरी गणतन्त्र नीति लागु पार्टी दे देखे त न्यने वेमा धाइदिल राष्ट्रिय जनमोर्चा र कार्यवाहक मु छ्यान्जे घनश्याम न्यौपाने काङ्ग्रेस लोकतन्त्र नीति ज्या यागु पलसा पुङ्का दिल 2007 चैत्र 26 गते चिन च्यादो या वैश्य तत्कालीन पार्टी सभापति मातृप्रसाद कोइराला हाती दुज जुया दिम गुल्मी या तमकास या गुई पेद या प्रजातन्त्र सेनानी मथुरा प्रसाद श्रेष्ठ या त हङ्गु ख त मुजा या 15-17 थौ व कने जुइगु लिसे निर्वाचन ज्याजो असोज 21-22 गते जुइगु थागुदो थौ सुथे काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिया मुजा चुनितेङ्गुदु ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ देका चुङ्गु हेटौडा ढल्केबार पेस केभी प्रसारण लाइन या निग मल्टी सर्किट टावर या ज्या इले कोचाके त उज बिहादिगुदु हेटौडा ढल्केबार पेस केभी सब स्टेसन या निरोक्षण या झोले मन्त्री श्रेष्ठ थते उज ब्यादिको खा प्रसारण लाइन चिन्हित न्यने न्यासा तपि तिथि प्राविधिक पङ्गल ज्या नेपाल भाषा एकाडेमी या पिथना कथ प्राध्यापक प्रेम शान्ति तुलाधर या निगुगु संस्कृति या विशेष नेपाल भाषा साहित्य इतिहास पिदङ्गुदु नेपाल भाषा अतिथि ख्य लिसे साहित्यकार भाषा सेवा पिनिगु मसिका लिसे नेवा मसिका दुथ्याका तगु उगु सफुया पित बोज्या आइतबार साहित्यकार यज्ञ रत्न थाक्का लिसे आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान या छ्यान्जे राम दवाल पिन्स मङ्का कथ
यनादिको ख पिदङ्गो सफिया तकया नेपाल भाषा एकाडेमिया चान्सलर मल्लके सुन्दर कवियत्री प्रतिशराज साइमी पाटन समिति क्याम्पस नेपाल भाषा विभागया प्राध्यापक डाक्टर राजनलाल जोशी साहित्यकार नर्मदेश्वर प्रधान पिच थुनुग ख तयादिको ख व्यवस्थित सुरक्षित दिखु घाट झी सक्सिएको सरकार नारा थोएका किपु नगरपालिका ग्वाली दिखु विकास समिति भिग पत्रकार मुजा या अगुदो अगु पत्रकार मुजा दिखु विकास समिति नायब बुद्धिलाल ज्यापु लाची तया दिखु योजनाबारे मुजा धतिका दिखु ख किपु नगरपालिका अन्तर्गत पुलाङको किपु बस्ती वडाल्या 1, 2, 3, 9, 10 लागाया नेवा समुदाय थिति थर समाज मुत मधेथुङका अन्तिम संस्कार याना वयाचुङ वडाल्या 3 चुङ्गु ऐतिहासिक दिखुघाट लागा विकास हो व्यवस्थापन नीति क्रियाशील दुगु दिखु विकास समिति किपुली क्रियाशील पी सुङ्गु परम्परागत गुथिया समानुपातिक प्रतिनिधि दुगु मङ्का संगठन जुगु नेतना दिल पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आनन्द प्रसाद पोखरेल विचार सङ्घर्ष वा नेतृत्व सफली नेपाय रान्तिक जीवन या थिति पछिता दुथ्याका गु धैदिल नेकपा एमाले जिल्ला कमिटि डोल्खा पाखे यहाँको सगोगु सफु पितबोज्य वेकल सफुली आनन्द प्रसाद पोखरेलले रान्तिक यात्रा वैचारिक दृष्टिकोण सङ्घर्ष वा नेतृत्व भूमिका तिथि पक्ष या त उलाब्युगु नेतना दिल सफिया चोमी आनन्द प्रसाद पोखरेल जीवने थमेस्या फयादीको दुःख कष्ट रान्तिक अनुभव या विशेष लिदास्या सफुली नेतना तगु जानकारी बिहा दिल मधुम जनकवि दुर्गलाल श्रेष्ठ या त किपली छगु साङ्गीतिक ज्याजो या दोथी श्रद्धाञ्जली दे छागु दु किपु तिन वडा खासी बजा या पासापुच कृति क्लब ओ नरेमान म्युजिक या गोस्या मबिपुखु लागे जुगु साङ्गीतिक श्रद्धाञ्जली दे छ्या ज्याजोले नेपाल भाषा सङ्गीत क्ष या जुजु काजी रञ्जित न्यू ब्रजाचार्य पवित्र कस्या सतीश महर्जन सत्यनारायण मानन्दर लक्ष्मण पालेखे लसता जोशी रत्न शोभा महर्जन रिता महर्जन दिपा महर्जन ओ नरेमान महर्जन पिन्स जनकव दुर्गाल श्रेष्ठ या चोसा पिजोगु मेहाला निङ्कुगु ख भदौ 10 गते या खुसी बाल रसुवा या सङ्गु सरकारी ओ छगु निजी विद्यालय पी न्याम विद्यार्थी आन त नाचुङ्गुदु शिक्षा तथा समन्वय इकाइ धुन्चे या प्रमुख दुर्गप्रसाद सिलवाल या कथ खुसी बाल पेङ्गु बनकुथी पुङ्क सिङ्गु नेतना दिल नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय टिमुरे मालिका देवी आधारभूत विद्यालय पैरव बेसी चिप्लेटी आधारभूत विद्यालय ओ मोडर्न ट्रिनिटी इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल खुसी बाल चुइका इङ्कुगु ख नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय टिमुरिया नि न्याम मालिका देवी आधारभूत विद्यालय या झिन्छम मोडर्न ट्रिनिटी या च्याम चिप्लेटी आधारभूत बोनिकुथी या समत नाचुङ्गु ख जसपा नेपा या पेमा नेता पिन्छ मङ्का कथ राजीनामा बिहादिगु दु उपेन्द्र यादव नेतृत्व जसपा नेपाल टोटोगु पी पार्टी पूर्व सांसद इन्दु कुमारी शर्मा केन्द्रीय सल्लाहकार दुज मोहम्मद पुयुफ साफी केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको कानुन विभाग दुज घनश्याम शर्मा हो पुष्पराज चमन पार्टी तोतादिगु ख आइतबार जारी यागु मङ्का विज्ञप्ति जसपा नेपा या साधन दुजो तक मधै कथा सक्ता जिमी पार्किङ राजनाम बिगु खन यतना तगु दु लिसे आनिसे हुकार मधेस नाय अभियान पाखे रान्तिक यात्रा न्ह्यने यङ्केगु वेकअपिन छ जानकारी बिहादिगु दु छु नि मदिक वगु वा या हुने पर्वत या सोस छेज पिन्स मेथ्या ब्या हिके मागु बाध्यता चुलागुदु जिल्ला सचिव नेखा छे थुनाबिगु व सचिव सुई छका छे सिङ्गुदु छे व ब्या हिले मापिन्त स्थानीय सरकार व नेपाल रेडक्रस सोसाइटी माकत हलोजुल चुलाका बिगुदु बाराया देवताल गाउँपालिका छ जबका न्या पुखुली डब्लुजिया निम मस्त सिगुदु देवताल गाउँपालिका छ रोबैया चिनपेद या निशा पटेल ओ चाँदनी पटेल सिगु ख हुम्ला जुया मनाङ मस्ताङ स्वाइगु नाप कर्णाली राजमार्ग हो नाङमा गमगढी सडक फिङ्के त ठेक्का कागु कम्पनी या त बालक ज्या मयागु धासे खुगु कम्पनी या त हाकुगु थलखे तगु दु
सडक डिभिजन प्रमुख श्रम कुमार मतारा खुगु कम्पनीया त हाकुकु थलक खे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय तगु निदना दिगुदु सुदूरपश्चिम प्रदेश हेगो लाग स्विनिद नागरिक स्वास्थ्य बिमा प्रणाली स्वागु दु स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सुदूरपश्चिम ज्याको या कथ भदौको तक थथे स्वागु ख बिमा छका छे या त छगु निसे निगो लाग तक दा या वास या फैगो व्यवस्था याना तगुदु तनुया नि न्यास वेपी च्याम मचा मस्त या मचा छे या मुटु या क्यान्सर विरुद्ध एसपिभी खोप भ्युकुदु गण्डकी प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय कथ वेकपिन त थथे खोप भ्युगु ख रुस छवा झ्योनिसे मधिक आकुन याना चोङगुली युक्रेन या राजधानी किबे जनजीवन बामलाक सिङ्गुदु किबे दुगु ऊर्जा दूरसञ्चार सडक रेल मार्ग पूर्वाधारे रुसी ड्रोन व मिसाइल केका चुङ्गुदु रुस विरुद्ध युद्ध ऐक्यबद्धता पुङ्केत जर्मनी चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज सुनान मसिक किब थेङ्का दिगुदु वेक किबे दुगु इलेहे डिनोप्रो खुसी दुगु नर्दन ब्रिजे रुस आक्रमण यागु ख रुसी आक्रमण जुयाचुङ इले मर्ज राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्की नाप सल ब्याका दिगुदु श्रीलङ्का वाया हुने पेम सिगुदुदासा क्षमतनाचुङ्गु दु वाया हुने चिन्सस व गुइम छेज पिन्त लिचो लाकुगुदु वा ओया खुस व चिन्नेका छे सिङ्गुदु थौ कोशी बागमती गण्डकी व लुम्बिनी प्रदेश या हिमाली व पहाडी लागा मो थासे वा नाप चपु गाईगु थागुदु मेथा पच्चा वा नाप चपु गाई मधेश कोशी बागमती गण्डकी व लुम्बिनी प्रदेश या तराई लागा छकुनीको थासे वा वैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग थागुदु सुनिगले मिग नि च्यागु फ्री पेङ्गु डिग्री सेल्सियस या क्वाज लुगु ख धासा कुए या क्वाज चिन्हेगु फ्री च्यागु तक कुहा वगु ख सोनीले सुथा न्याता ई जुया ने निगु मिनेटे लुगु सूर्य सनिला न्याता इजुया ने सुगु मिनेटे बी नेपाल भाषा समाचार कोचाल शुभ्या

माया विवाह याङसे सेमसे मानबारी खाम्बा गुर्गीको ज्याबा अनुभूति हिन्न थिनुन माया विवसे जति गोजी थेदेनुन गोबारे आखम्बा थे नुप्सी निपमुलारो गुर्गी तिङदा ङाम्री बाबारी खाम्बा हिनुन थिनुन माया हिन्नारो माया विवसेला जाल्डी परप्तामा हिन्से सेमसे गुर्गीकनुन ताम्ला मोही बोला बमुलारो मायाला चु सम्बन्ध खाइमाइनुन आ ह्याल गाई दुईला छ्यामामा अझ कुङसी कुङसी निगाई ओसेम केवा हिन्से केवा दोना छार्सेन टिगाई विव मान बमुलारो चुनाङमान गुर्गेको वाइङ्गे झालमाया झालमाया कादे ज्याबा चुमाया केवा हिंसे केवा दोना छासी टिगाई चुमाया बेबवाई वाइरी काइमुला निर्मला घिसिङथेन रमन थामिला चुवाइगम चुपालसे काइमो निर्मला घिसिङसे निम अवार्ड अर्थात नेसनल इन्क्लुसिभ म्युजिक अवार्ड डाबरी खामा।

सालगर के तांगरी रंग डिपेंडेंट मला उसन गे तांगरी रंग थेन श्याम मला ना सूर्य मोक्तान तिनीला गे तांगरी तिलाई मायाला घुर्किला बाला डान माला समर्पण ला रंग द सिमनी बा मेला तामला बन थेरंग मान ताम दकिंसी सोबा ज्याबा ज्याबा तामंग वाय गदे रापसिटी बबला गे तांगरी डिपेन मायालन ताम लागे मायारी खापै बिमा ज्याबा ताम बिबन रंग द सिमनी बा मिग्याम थारिंग आतागै बिबा हिन्ना माया ग्याम थारिंग तादुलाकी बिबा तामरी लुङतो बिमाइनुन माया लाबा कादेला लुइरी गिक्से अर्कुता आसिदे दोना माया लासिन्टिगे गिक्से अर्कुला याचुङसी भ्रबरी म्याङ्गी बिबताम मान बाबलार मेन्दोङी मिला सेमथेन तिङेन सेन लाबा माया गिक्पीमा अर्को थारेङ खाइमाइनुन ता आतोकै बिसे नुप्प माया लाबा ताम्री सोभा चो अर्को वाइङ्गी तान्देला ताङ्री ग्यान्गे वाइसे बिबन मला एथेन गाला चो माया खाइमाई आटाङ्गै चुलुइ गाला मुदे दोना एग्याम खाइमाई थारेङ आतागाई वाइरेखाई मला जितो लप्चन थेन बिहिन्द।

मायावी बताम रुप्ताबा थेन्ताङमाला तामलासी थाब दुई चेके नाङिन सुख दुःखरी लुई भर्नुन छ्याम्टीबा थेन सोबारे बिसी मायाला छोख्रेमारीला बतामनुन माया हिन डहु दोङरी गोर्गिग्नुन जाङसो सिटीबा मैना चरी राङमान लुइला बेनान दुई गदरी गिक्ला अर्को ज्याबारो धोसी शोभा विभानुन माया हिन्न माया लाबा गदे बेदान छेन चुराङमान चुराङमा ताम गदे भानबा मोलारो अझ गोर्गिक जजाबा दिम तागाइरो गोर्गिग्नुन जम्बुलिङ तागाइरो ओसेम लिच्छा लिच्छा जुग जुग दोनान माया आटाङ्गैरो रेङबा दुई दुई दोना केवा हेन्से केवा दोना छ्याम छ्याम्नुन टिबारी थेन सोबारी खामगाई बिब ताम दिन्से शोभा अर्को बायाँ प्रीतिला भाइङ्गेन गे वाइसे विमानमला डहु धोङला जोरी घादे जेना मैना जाङ्गिरी सोदे दिम नाम ग्लागिगिरी सिमाई दुर्सा गङ्गिक रिपिप भाइ वाइरे काइमला रामबाबु योन्जन थेन सोनिया लामाला।

ई रेडियो नेपाल थिक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। सरकार जेन्ची आन्दोलन सँग सम्बन्धित मुद्दाक सम्बन्धमे छानबिन करबाक लेल गठित समितिक प्रतिवेदन आवश्यक कयार्थक लेल गृह मन्त्रालय पठबाक निर्णय कयलक अछि। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदक कार्यालय सिंह दरबारमे आइ बैसल मन्त्री परिषदक बैठक जेन्ची आन्दोलनसँ सम्बन्धित घटनामे फौजदारी अभियोजन भेल मुद्दा फिर्ता कयल जा सकबाक आ नहि कयल जा सकबाक सम्बन्धमे पूर्व न्यायाधीश बाबूराम मजगमीक अध्यक्षतामे गठित समिति पेश कयल प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ करबाक लेल गृह मन्त्रालयमे पठेबाक निर्णय कयल। सरकारक प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल जानकारी देलनि। एहिना नगरपालिका सभमे स्वच्छ ऊर्जा रूपांतरणके प्रवर्धन करबाक कार्यक्रमके लेल नॉर्वेजियन सरकारसँ प्राप्त होमयवला लगभग 10 करोड़ नेपाली टाका बराबरके अनुदान सहायता प्राप्त करबाक लेल स्वीकृति देबाक निर्णय भेल। प्रवक्ता पोखरेल बतौलनि। प्रवक्ता पोखरेल नेपाल इंजीनियरिंग सेवा गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन आ नियुक्ति दोसर संशोधन नियमसभ 2083 वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली 2083 स्वीकृत करबाक आ सह सचिव पद्म कुमार मैनालीके नेपाल इंजीनियरिंग सेवा समूहीकरण दिशाक सचिव पद पर पदोन्नति का शहरी विकास मंत्रालय में पदस्थापन करबाक निर्णय भेल बतौलनि। बीतल भादव 10 गते भोटे कोसी नदी में आयल विनाशकारी हिम बाढ़ भूस्खलन पश्चात 40 दिन सँ संचालन रहल खोज तथा उद्धार कार्य सरकार स्थगित कयलक अछि। जीवित उद्धार के संभावना न्यूनत बनैत गेलाक बाद अब सरकारक प्राथमिकता प्रभावित के पुनर्स्थापना आ क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाक पुनर्निर्माण में केन्द्रित होबाक भेल अछि। प्रधानमंत्री वालेन्द्र शाहक अध्यक्षता में आई सिंह दरबार में बैसल विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रीय परिषदक 21वीं बैठक अत्यावश्यक अतिरिक्त खोज तथा उद्धार कर स्थगित का पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना के तीव्रता देवाक निर्णय कलक अछि। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषदक कार्यालय के अनुसार जिला शिक्षा समिति जिला विपद व्यवस्थापन समिति आ राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणक सिफारिश तथा स्थलगत अध्ययनक आधार पर ई निर्णय कयल गेल अछि। बैठक में प्रधानमंत्री शाह भादव 10 गते एम्हर संघ प्रदेश आ स्थानीय सरकारक समन्वय में उपलब्ध स्रोत साधन तथा जनशक्ति परिचालन का विपद व्यवस्थापन कयल बतौलनि। प्रधानमंत्री वालेन्द्र शाह 3 तह संघ प्रदेश आ स्थानीय सरकार बीचक आपसी समन्वय में बीतल भादव 10 गते एम्हर के विपद व्यवस्थापनक कार्य सब निरंतर भ रहल बतौलनि अछि। सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषदक कार्यालय में आई आयोजित विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रीय परिषदक 21वीं बैठक के संबोधित करैत ओ सरकार कोनो समझौता नहि कऽ विपद व्यवस्थापन में जुटि रहल स्पष्ट कयलनि। गंडकी बागमती मधेश आ कोसी प्रदेशक मुख्यमंत्री सभक सेहो सहभागिता रहल एहि बैठक में प्रधान

मंत्री शाह हमरा सबसंग उपलब्ध स्रोत साधन आ जनशक्ति के अधिकतम परिचालन का यथाशीघ्र विपद व्यवस्थापनक काज सम्पन्न करबाक कारणे एहि विषय में निश्चित हेबाक लेल आग्रह कयलनि। प्रधानमंत्री शाह होटे कोशी त्रिशूली गंडकी सहित अन्य क्षेत्र में बाढ़ आ भूस्खलन से पहुँचाओल क्षतिक विस्तृत अध्ययन सहित पुनर्निर्माण व्यवस्थापनक काज भ रहल जानकारी देलनि। संगे विपद जोखिम न्यूनीकरणक लेल पूर्व सूचना प्रणाली के थप सुदृढ़ बनेबाक संगे हिम आ भूस्खलन के जोखिम घटेबाक लेल सरकार आवश्यक तैयारी आ काज रहल हुनक कथन छल। अपन जान सेहो जोखिम में राखि उधार तथा व्यवस्थापन में खटल राष्ट्र सेवक कर्मचारी सुरक्षाकर्मी स्वयंसेवक आ राजनीतिक दलक प्रतिनिधि सब प्रति प्रधानमंत्री शाह विशेष कृतज्ञता व्यक्त कयलनि। प्रधान न्यायाधीश डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा अवरोध से उत्पन्न होवला जोखिम के पूर्व अनुमान कयल जेबाक कहैत एहि से उत्पन्न होवला समस्या समाधान कऽ सकबाक प्रभावकारी रणनीति बनाओल जेबाक बात पर जोर देलनि अछि। संकट के समय में लचीला इंटरनेटक संरक्षण करबाक नामक नाराक संग एशिया प्रशांत क्षेत्रीय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम APGFI ललितपुर में आयोजन कयल 17वां संस्करण के कार्यक्रम में वो इंटरनेट गवर्नेंस जोखिम व्यवस्थापन इंटरनेट के संचालन नीति निर्माण आ प्रयोगक क्रम में आबि सक वाला संभावित जोखिम के पहचान मूल्यांकन आ नियंत्रण करबाक प्रक्रिया आ तैयारी उत्थानशीलता पर आधारित होबाक बात पर जोर दिलन। उत्थानशील इंटरनेट आ डिजिटल पूर्वाधार के नाम कह के अर्थ मां व्यक्ति ओकर अधिकार आ संस्थाक रक्षा करब ठीक। अधिकारक प्रभावकारी उपभोग आ अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा में पहुँच सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधार में निर्भर होइत अछि। विश्वव्यापी नारी के रूप में हमसब एकटा एहन इंटरनेट गवर्नेंस ढांचा निर्माण करबाक लेल मिल का काज करबाक चाही जे सुरक्षित समावेशी जवाबदेही आ मानव केंद्रित हुए जे नवीनता के अंगीकार करे कोनो समुदाय पाछू नहीं छूटे प्रधान न्यायाधीश डॉक्टर शर्मा कहलनि। प्रधान सेनापति अशोक राज सिग्देल औपचारिक भ्रमण के लिए मित्रराष्ट्र संयुक्त अधिराज्य बेलायत प्रस्थान कलन अछि। प्रधान सेनापति सिग्देल बेलायती सेनाक चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ जनरल सर रोली बुआकर के निमंत्रण में आसीन 19 से 25 गते धरि बेलायत भ्रमण में रहबाक नेपाली सेनाक जनसंपर्क तथा सूचना निदेशनालय जनौलक अछि। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में प्रधान सेनापति सिग्देल के बलाधिकृत रथी प्रदीप जंगकेसी विदाई कयने छलनि। भ्रमण से सदियों से रहित आयल दुनू देश बीचक आपसी सैनिक संबंध के थप सहयोग पहुँचबाक विश्वास नेपाली सेना लेलक अछि। सैनिक कूटनीतिक मार्फत नेपालक पर राजनीति के सेहो ऐसा नकारात्मक योगदान पहुँचबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। प्रधान सेनापतिक अनुपस्थिति में बलाधिकृत रथी प्रदीप जंगकेसी कायम प्रधान सेनापति रूप में कार्यभार संभालता। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा आम संचार तथा पत्रकारिता क्षेत्र के व्यवस्थित जिम्मेवार व्यवसायी का प्रभावकारी बनेबाक लेल कानून मार्फत मजबूत एवं अधिकार संपन्न नियामक संयंत्र तैयार करय लागल बतौलनि अछि। बागमती प्रदेशक संचार रजिस्ट्रार रेवती प्रसाद सापकोटा गंडकी प्रदेशक प्रेस रजिस्ट्रार विमला भंडारी आ मध्य प्रदेश आम संचार प्राधिकरणक अध्यक्ष जितेंद्र कुमार खड़का सँ आई मंत्रालय में भेल भेटघाट तथा छलफल में वो संचार क्षेत्रक नियमन के प्रभावकारी बनेबाक लेल नया कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था करय लागल बतौलनि। संचार मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा संचार माध्यमक स्वतंत्रता कायम रखैत पत्रकारिता क्षेत्र के थप जिम्मेवार व्यावसायिक बनेबाक लेल नियामकीय संयंत्र प्रभावकारी हेबाक बात पर जोर देलनि। वो संचार क्षेत्रक नियमन के लेल प्रस्तावित प्रेस काउंसिल विधेयक आ आम संचार विधेयक मार्फत नियामक निकाय के अधिकार सम्पन्न प्रभावकारी आ कार्यान्वयन योग्य बनाओल जेबाक उद्देश्य रहल बतौलनि। नियमन करयवला संस्था के प्रभावकारी बनब एते संचार तथा पत्रकारिता क्षेत्र विद्यमान समस्या समाधान कऽ सकबाक संस्थागत संरचना विकास करबाक लेल सरकार तैयार रहल ओ स्पष्ट कयलनि। छलफल में प्रदेशक संचार तथा प्रेस संबंधी निकायक प्रमुख सब आम संचार क्षेत्रक नियमन सँ संबंधित विद्यमान कानूनी तथा संस्थागत समस्या संबंध में संचार मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हाक ध्यान आकर्षण करौने छलथि। वो लोकन संशोधन के क्रम में रहल आम संचार संबंधी विधेयक में संचार माध्यम के दर्ता अभिलेखीकरण अनुमति पत्र तथा नियमन संबंधी व्यवस्था के स्पष्ट कयल जेबाक सुझाव देलनि। विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रवर्तन मंत्री महावीर पूर्ण औपचारिक शिक्षा प्राप्त कयल आधार पर रोजगारी सुनिश्चित नहीं हेबाक कारणे विद्यार्थी के सीप अनुसंधान तथा नव प्रवर्तन में केंद्रित कयल जेबाक बात बतौलनि अछि। युवा श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के आयोजन में एहि आसीन 14 गते सँ इटहरी में जारी श्रम रोजगार मेला के रवि दिन सँ
सम्बोधित करैत मंत्री पूर्ण विश्वविद्यालय तथा कॉलेज में पठन पाठन संगे अनुसंधान आविष्कार आ नव प्रवर्तन के गतिविधि के प्राथमिकता दल जेबाक बात बतौलन। विद्यार्थी के नौकरी खोला से नहीं भ नया वस्तु तथा प्रविधिक विकास का ओकर व्यवसायीकरण मार्फत स्वयं उद्यमी बन सकबाक बनाओल जेबाक मंत्री पूर्ण के कथन छल। विश्वविद्यालय तथा कॉलेज में नव प्रवर्तन केन्द्र स्थापना का आवश्यक उपकरण तथा स्रोत साधन के व्यवस्था कल जेबाक बात पर ओ जोर दलन। ओ नेपाल में उपलब्ध जड़ी बूटी के अध्ययन अनुसंधान तथा प्रयोग के लिए आवश्यक प्रयोगशाला निर्माण कल जेबाक मंत्री पूर्ण के कथन रहा है। उच्च शिक्षा सुधार तथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप संबंध में मध्य प्रदेश में उच्च स्तरीय संवाद शुरू भेल अछि। यूनेस्को नेपालक सहकार में शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय आई 12 के सिमरा में उच्च शिक्षा सुधार तथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप संबंध में संवाद कार्यक्रम आयोजन कलक अछि। कार्यक्रम में संघीय संसद प्रदेश सरकार तथा विश्वविद्यालय पदाधिकारी स्थानीय सरकार भेल निकायक प्रतिनिधि नागरिक समाज सरकारी नीति निर्माता विज्ञ सहित सरकार भेल निकायक सहभागिता अछि। उच्च शिक्षा सुधार तथा राष्ट्रीय योग्यता प्रारूप मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के भविष्य विषय दू दिवसीय उच्च स्तरीय संवाद कार्यक्रम में उच्च शिक्षा सुधार तथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप संबंध में संबंधित विषय विज्ञ कार्य पत्र प्रस्तुत करता। प्रस्तुत कार्य ऊपर समूहगत छलफल हेत उच्च स्तरीय संवाद कार्यक्रम में शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल सहभागी हेता। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। एहि वर्षक नोबेल चिकित्सा पुरस्कार आइ घोषणा कयल जायवला भेल अछि। अमेरिकी मनोचिकित्सक तथा स्नायुविद कार्ल डाइसोरथ, हुनक जर्मन सहकर्मी पीटर हेगेमान आ जर नागेल के ऑप्टोजेनेटिक्स क्षेत्र में कयल काजक लेल ई पुरस्कार प्रदान कयल गेल। चिकित्सा दिशक नोबेल पुरस्कार छनौट समिति जनौलक अछि। जीवित मस्तिष्क में स्नायु कोष कोना स्मृति भावना आ व्यवहार सब निर्माण करत एहि संबंध देखेबाक लेल संभव बनेबाक विधि के ऑप्टोजेनेटिक्स कहल जाइत अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।

ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। भोटेकोशी बाढ़ में लापता लोगों की खोज और उद्धार कार्यक्रम फिलहाल स्थगित करने का सरकार का निर्णय। प्रभावित क्षेत्र में पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना के काम तीनों तहों की सरकारों के समन्वय में आगे बढ़ाए जाएंगे, प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का कथन। कांग्रेस महाधिवेशन के बंद सत्र में राजनीतिक सहित विभिन्न प्रतिवेदनों पर हुई सामूहिक चर्चा, सत्र ने विधान को किया पारित।

21वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक ने आवश्यक खोज कार्यों के साथ ही पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना का काम तेजी से आगे बढ़ाने का संबंधित निकायों को निर्देश दिया है। यह निर्णय जिला सुरक्षा समिति, जिला विपद प्रबंधन समिति, राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति और स्थलगत निरीक्षण की सिफारिश के आधार पर लिया गया है। बैठक ने प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण पुनर्स्थापना के लिए विभिन्न मंत्रालयों और निकायों से प्राप्त 504 योजनाओं के लिए 5,59,17,72,27,000 रुपए के बजट को मंजूरी देने की सिफारिश अर्थ मंत्रालय को भेजने का भी निर्णय किया है। प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि विपद प्रबंधन का काम संघ, प्रदेश और स्थानीय सरकारों के समन्वय में हो रहा है और अब पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना का काम भी इसी समन्वय के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। विपक्षी दलों तथा नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेता और बागमती गंडकी मधेश तथा कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने इस कार्य में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। सरकार ने जेनजी आंदोलन से संबंधित मामलों की जांच के लिए गठित समिति की रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय भेजने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने पूर्व न्यायाधीश बाबूराम रेग्मी की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट गृह मंत्रालय भेजने का निर्णय किया है। समिति ने जेनजी आंदोलन से संबंधित घटनाओं में आपराधिक अभियोजन किए गए मामलों को वापस दिया जा सकता है या नहीं, इस संबंध में रिपोर्ट पेश की थी। सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल ने ये जानकारी दी। बैठक ने नगर पालिकाओं में स्वच्छ ऊर्जा रूपांतरण को बढ़ावा देने के कार्यक्रम के लिए नॉर्वे सरकार से करीब 10 करोड़ नेपाली रुपए की अनुदान सहायता स्वीकार करने की भी मंजूरी दी है। इसी तरह बैठक ने नेपाल इंजीनियरिंग सेवा से संबंधित दूसरे संशोधन नियम 2083 और वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली 2083 को मंजूरी दी है। सह सचिव पद्म कुमार मैनाली को नेपाल इंजीनियरिंग सेवा के सचिव पद पर पदोन्नत कर शहरी विकास मंत्रालय में पदस्थापित करने का भी निर्णय किया गया है। रसुआ में गत भाद्र 10 को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद 3 सरकारी और 1 निजी विद्यालय के 45 विद्यार्थी अभी भी लापता हैं। शिक्षा तथा समन्वय इकाई धुंचे के प्रमुख दुर्गा प्रसाद सिलवाल के अनुसार बाढ़ से जिले के 4 विद्यालय भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनमें नेपाल राष्ट्रीय आधारभूत विद्यालय टिमुरे, मालिका देवी आधारभूत विद्यालय पैरे बेसी, चिपलेटी आधारभूत विद्यालय और मॉडर्न ट्रिनिटी इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल शामिल हैं। लापता विद्यार्थियों में टिमुरे विद्यालय के 25, मालिका देवी के 11, मॉडर्न ट्रिनिटी के 8 और चिपलेटी के 1 विद्यार्थी हैं। प्रभावित विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। चिपलेटी के विद्यार्थियों को डांडा गांव और ठुलो गांव के विद्यालयों में, मालिका देवी के विद्यार्थियों को नव विजय माध्यमिक विद्यालय भलाई डांडा और ट्रिनिटी के विद्यार्थियों को नीलकंठ माध्यमिक विद्यालय में रहने और पढ़ने की व्यवस्था की गई है। बाढ़ के कारण गोसाईकुंड, आमा छोदिंगमो, उत्तर गया और कालिका के विद्यालय पूरी तरह बंद हो गए थे, जबकि नौकुंड गांव पालिका में भाद्र 11 से ही पढ़ाई शुरू हो गई थी। नेपाली कांग्रेस का संशोधित विधान पारित कर दिया गया है। पार्टी के 15वें महाधिवेशन के दूसरे दिन आज काठमांडू में खुला मंच में आयोजित बंद सत्र ने महामंत्री प्रदीप पौडेल द्वारा पेश संशोधित विधान को पारित किया। पार्टी प्रवक्ता देवराज चालीसे के अनुसार संशोधित विधान में केंद्रीय कार्य समिति 297 सदस्यीय होगी। इसमें 1 सभापति, 1 वरिष्ठ उपसभापति, 4 उपसभापति, 3 महामंत्री और 15 सह महामंत्री होंगे। 4 उपसभापतियों और 3 महामंत्रियों में 1-1 महिला अनिवार्य की गई है। कोषाध्यक्ष का चयन केंद्रीय सदस्यों में से किया जाएगा। केंद्रीय सदस्यों में खुली श्रेणी से 45, महिलाओं से 15 तथा प्रत्येक प्रदेश से 1 महिला सहित 4 सदस्य होंगे। विभिन्न समावेशी समूहों के लिए भी सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। विधान में 7 प्रदेशों से 35 वर्ष के कम उम्र के 21 युवा, दिव्यांगता वाले व्यक्तियों में से 1 तथा लोकतंत्र सेनानियों से 3 केंद्रीय सदस्य रखने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय कार्य समिति 66 सदस्यों को मनोनीत करेगी। कांग्रेस के अनुसार सभापति, उपसभापति और कोषाध्यक्ष की रिपोर्ट मंगलवार के बंद सत्र में पारित की जाएगी। मंगलवार सुबह 10 बजे से उम्मीदवारों का नामांकन शुरू होने के कारण संशोधित विधान को सोमवार को ही आज ही पारित किया गया है। नेपाली कांग्रेस के 15वें महाधिवेशन के केंद्रीय निर्वाचन

0: समिति ने केंद्रीय कार्य समिति के चुनाव की निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक कर दी है। केंद्रीय निर्वाचन समिति के सदस्य सचिव राजू कटवाल के अनुसार कार्यतालिका में आज शाम 5 बजे से निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होने के बाद शाम 5 बजे मतदाता सूची प्रकाशन, शाम 5 से 6:30 बजे तक मतदाता सूची पर दावा विरोध पंजीकरण और रात 8:30 बजे मतदाताओं की अंतिम सूची प्रकाशित होना शामिल है। इसी तरह कल 20 अश्विन को सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवारों के नामांकन होंगे। शाम 4:30 बजे अंतिम नामावली प्रकाशित की जाएगी। शाम 4:30 से 5:30 बजे तक नामांकन पर दावा विरोध और शाम 7 बजे उम्मीदवारों की दूसरी सूची प्रकाशित की जाएगी। 21 अश्विन को सुबह 9 बजे तक नाम वापस ले जा सकेंगे और सुबह 10 बजे उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित होगी। पूरे दिन प्रचार प्रसार किया जा सकेगा। इसके बाद 22 अश्विन को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान के लिए राष्ट्रीय सभागृह, खुला मंच और प्रज्ञा भवन को केंद्र बनाया गया है। निर्वाचन समिति के अनुसार मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना की जाएगी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: फोनमा कुरा गर्दा आवाज स्पष्ट नआएर दिक्क लाग्छ।
2: अब अनुभव गर्नुहोस् नेपाल टेलिकम 4G भोल्टे।
1: भोल्टे भोइस ओभर LTE अब तपाईँको हरेक कुराकानी अझ स्पष्ट, अझै जीवन्त।
2: HD भोइस क्वालिटीसँग कम ब्याकग्राउन्ड नोइज र अल्ट्रा क्लियर आवाज।
1: यस्तो अनुभव मानव तपाईँले कुरा गरिरहनु भएको व्यक्ति तपाईँको छेउमै हुनुहुन्छ।
2: र अझ रमाइलो कुरा,
1: फोनमा कुरा गर्दै गर्दा पनि चलाइरहनुहोस् 4G स्पिड इन्टरनेट।
2: क्लियर कॉल्स र फास्ट इन्टरनेट एकै साथ।
1: सेवा सुचारु गर्न आफ्नो फोनमा #444 हैश डायल गर्नुहोस्। 4G भोल्टे
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। भोटेकोशी होते हुए त्रिशूली नदी में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त नुआकोट और रसुआ को जोड़ने वाले वित्रावती स्थित फलाकू खोला में बेली ब्रिज लगाने का काम शुरू होने जा रहा है। पुल के लिए आवश्यक सामग्री लाने का काम जारी है और बुधवार से पुल निर्माण शुरू कर दशहरा से पहले इसे यातायात के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है। नेपाली सेना के सेनानी चिरंजीवी चौलागाई के अनुसार पुल निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री सेना के धादिंग के बैरेनी और बारा में रखे भंडार से लाई जा रही है। आज तक सभी सामग्री वित्रावती पहुंचने की उम्मीद है। बुधवार से नेपाली सेना की 55 सदस्यीय टीम बेली ब्रिज लगाने का काम शुरू करेगी। दांग के देवखुरी में यात्री बस और ऑटो की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में प्युठान के सरुमारानी गांवपालिका 5 की 45 वर्षीय नमसरी बराल और 2 महीने की बच्ची जेनिसा सोमई मगर शामिल हैं। पुलिस के अनुसार दुर्घटना लम्ही नगरपालिका 3 स्थित मजगांव चौक पर हुई। लम्ही से भालवांग जा रहा ऑटो और भालवांग से लम्ही आ रही यात्री बस आपस में टकरा गई। दुर्घटना में ऑटो चालक जीत बहादुर पल्ली मगर, संगीता सोमय मगर और नौबहनी गांवपालिका 8 के 28 वर्षीय गोपाल अधिकारी घायल हुए हैं। तीनों का लम्ही अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। बागलों की निसीखोला गांवपालिका 3 बोहरा गांव में सड़क निर्माण के दौरान अचानक मिट्टी का ढिसका गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 1 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ है। जिला पुलिस कार्यालय के अनुसार आज सुबह करीब 7:30 बजे कापरा बोहरा गांव छापाखानी प्युठान सड़क निर्माण के दौरान यह हादसा हुआ। मृतकों की पहचान सल्यान के 28 वर्षीय लाल बहादुर बुढ़ातो की और उदयपुर के गायघाट निवासी 32 वर्षीय राजू थापा के रूप में हुई है। मिट्टी में दबे 3 मजदूरों में 2 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि रोलपा के कृष्ण घरती मगर को गंभीर रूप से घायल अवस्था में निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खटक राज पौडेल ने कहा है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण नेपाल वायु सेवा निगम कमजोर होता गया है। प्रतिनिधि सभा की अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा पर्यटन समिति की आज की बैठक में मंत्री पौडेल ने कहा कि निगम का मामला केवल लाभ हानि का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सम्मान का विषय है। उन्होंने कहा कि निगम की ऐतिहासिक साख को बचाना राज्य का दायित्व है। मंत्री पौडेल ने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार ने निगम को पूरी स्वायत्तता के साथ काम करने और निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता दी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सन 2026 का चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कार्ल डिसेरोथ, पीटर हेगेमान और जॉर्ज नेगल को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। नोबेल समिति के अनुसार तीनों वैज्ञानिकों को प्रकाश द्वारा नियंत्रित आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से संबंधित खोजों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। उनकी खोजों ने प्रकाश के माध्यम से कोशिकाओं, विशेष रूप से तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली तकनीक विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस तकनीक को ऑप्टोजेनेटिक्स कहा जाता है। ऑप्टोजेनेटिक्स ने मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के अध्ययन के लिए नई संभावनाएं पैदा की हैं। नोबेल समिति के अनुसार इन खोजों ने आधुनिक जैविक और चिकित्सा अनुसंधान के लिए नए रास्ते खोले हैं और मानव स्वास्थ्य से जुड़े अध्ययनों को भी अधिक प्रभावी बनाया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भोटेकोशी बाढ़ में लापता लोगों की खोज और उद्धार कार्यक्रम फिलहाल स्थगित करने का सरकार का निर्णय। प्रभावित क्षेत्र में पुनर्निर्माण और पुनः स्थापना के काम तीनों तहों की सरकारों के समन्वय में आगे बढ़ाए जाएंगे, प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का कथन। कांग्रेस महाधिवेशन के बंद सत्र में राजनीतिक सहित विभिन्न प्रतिवेदनों पर हुई सामूहिक चर्चा, सत्र ने विधान को किया पारित। कांग्रेस की नई कार्य समिति के लिए आश्विन 22 को होगा मतदान और इस साल चिकित्सा शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा मस्तिष्क के स्नायु कोश गतिविधियों के बारे में अनुसंधान कर रहे तीन वैज्ञानिकों को। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।